नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सुदिनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpa ji,

0: I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life, I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor. Let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi. And all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Kedonar.
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti Vishwa Shanti Nepal ke liye. So Brahmarishi ji aaiye aap and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi P. Thawla Nagore.
2: Nagore. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में कबीरा, हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान वो

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है, आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

0: विद्दु and when is the thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di da da di nam tak ta
1: Shiva ko klesh
0: da ke di gri blag bi tra ka gri gri grag da du da di ka bai ta re ge ge ge ge एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है नींद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद,

0: एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhaya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, Jinki Pavan Kripa Se, इस आश्रम में, होम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही है।
2: सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स व्हाटएवर कर्मस वी वांट टू डू। सो इंटेलेक्ट एंड कर्मस आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर ह्यूमंस।
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: वी गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू गुड इन दिस टाइम।
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
2: इन वेदस इट सेज that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया।
2: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwaguruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
2: So in Vedas it's said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our Guru.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
2: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं. आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
2: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
2: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
0: हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत.
2: Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jai. Swami Atmanand ji Maharaj ki jai.
0: Swami Gyaneshwar Puri ji Maharaj ki jai.
2: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit, 1-2 shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from its, it can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridaha Kasya Svidhanam Kurvaneve karmani jiji vishechatam samaha evam tvai nanyate tosti na karma lipyate nare asurya namate loka andhena tamasavritaha tanste pretyabhi gachanti ye ke chatmahano janaha ane jade kammana sojaviyo naina deva apnuvan purva marshat tadhavato anyena tieti tishta tasmina po matarishva dadati Tade jati tane jati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya se bahyataha yastu sarvani bhutani atmanyavanu pasyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijadaha vijatanataha tatra komoha kaha shokaikatvamanu pasyataha. So we reach till the 5th shloka, and I will just tell the short of the 6th and 7th shloka. Yastu sarvani bhutani atmanyeva nupashyati. So Ishavasya Upanishad, first three mantras, it gave us the moral and ethical principles. Then it started to describe the God, Atma, or divine energy. So the person who sees all beings in itself, and he sees self in all beings, he cannot hate, because just by

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहरं

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है,
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरु जी टोल्ड, गुरु जी गेव यू द mantra, the teachings and all what you have to do,
0: उस पर पकड़ रखना,

0: यू हैव टू फॉलो.
1: इसको धीरती बोलते हैं.
0: दिस इज कॉल्ड धीरती.
1: क्षमा,
0: इंड्यूरेंस,
1: पेशेंस. कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए. जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है. आई एम वेरी सॉरी.
0: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव. सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स.
1: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए.
0: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड.
1: दृष्टि क्षमा दमस्तेम. प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना. नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा.
0: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील. व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील.
1: पवित्रता,
0: प्यूरिटी.
1: पवित्रता बहुत जरूरी है. मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज.
0: सो प्योरिटी लाइक इन एरोप्लेन आई टेक ओनली वाटर बिकॉज और एयर बिकॉज द पीपल आर ऑफरिंग वेज नॉन वेज एंड ऑल दिस इम्प्योर थिंग्स.
1: वो पवित्र नहीं होता. शोध मानी शुद्ध नहीं होता.
0: दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट क्लीन.
1: तो धृति क्षमा दमस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवे. ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
0: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोज, दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
1: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
0: इन बृहदारण्यक उपनिषद इट सेज इफ योर deeds and if your deeds and the food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
1: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko sadupyog mein lana chahiye. Dhi mani buddhi. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धीमनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
0: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
1: विद्या,
0: नॉलेज,
1: नॉलेज जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या।
0: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री।
1: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है आपको।
0: सो यू आर प्योर व्हेन यू आर नॉट हैविंग ऑल दिस अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड, माद मोह राग द्वेष एंड सो ऑन ऑल दिस।
1: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो।
0: इन वेदस देयर आर टू टीचिंग्स व्हिच आर टॉट इन द बिगिनिंग, टेल द ट्रूथ एंड फॉलो द धर्म, फॉलो योर ड्यूटी।
1: ये कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया।
0: सो योर द फर्स्ट क्लास ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज डन इन दिस 15 मिनट्स।
1: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है, जो उसके घर से साधना शुरू होती है।
0: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस।
1: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है। एक ही रोड के अलग अलग नाम।
0: So there is only one road with different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
1: Bombay Surat road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: he is telling the map of India.
1: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया। और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता।
0: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड। व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
1: Middle ka arth hota hai yog mark. Jis mark ka naam, jitna ka mark ka naam yog hai, usko yog bolte.
0: The middle school is yog.
1: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना है।
0: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
1: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक। यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम।
0: The book which tells us how to control ourselves is called नियम।
1: नियम, यम अपने को रोकना।
0: यम is the book which tells us how to stop ourselves।
1: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया।
0: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, व्हेन योर
1: नियम मींस कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
0: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called niyam.
1: यम नियम के बाद में आसन है.
0: After that is yasana.
1: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
0: So
1: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
0: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
1: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है, वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मेटेरियल की, सामान की.
0: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
1: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है short and sweet. समझिए, प्रत्याहार मानी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
0: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
1: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
0: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी, बट यामा एंड यामा द रूल्स ऑफ आउटर एंड इनर बिहेवियर दैट नोबडी टेल्स.
1: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
0: So after the asana and pranayam pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
1: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
0: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
1: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
0: So
1: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
0: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand, so this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na
3: Baba Ramdev ji
1: kahan aa jaa wo hamara chela hai, wo unko pata hai sabko. To usme ye hai, ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
0: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन own capability and so on.
1: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला

0: किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified the new 21 generations crossed over this samsara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी सन्यास ले लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो।
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया है।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूंगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5 10 20 50 100 और 500 रुपीस, व्हिच वन यू विल टेक?
0: अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: फ्रॉम ऑल ऑफ
0: 500 का ना, 500 का,
1: फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू विल टेक 500
0: का, ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे, 200 का नहीं, कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है. So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation you will continue thinking, or during the meditation you will continue thinking on them. Because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का

0: ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है,
1: देयर इज अ फैमिली,
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: द For any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है. अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहां पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: सो द सविकल्प समाधि इज व्हेन देयर इज अ गॉड हु ही अंडरस्टैंड्स एंड देयर इज हिज डिजायर्स व्हाट ही वांट्स, सो विद सम डिजायर और विद सम एम.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: सो इन निर्विकल्प देयर इज नाइदर डिसाइपल, देयर इज नो गुरु, दे बोथ मर्ज इनटू द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की. 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
1: सो फर्स्ट
0: श्रवण भक्ति.
1: सो फर्स्ट इज लिसनिंग, सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स.
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: Kirtan or remembering is that you remember only the verse of Ishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next
0: Dasya, Sevak, Shishya, Usko Dash, Dasya Bhakti kaha gaya hai.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: Dash, apna, apna istitva, apna mahatva, apna ahem akar prakar swarup mita karke guru mein samahit ho jana unki seva mein usko das bolte hain.
1: Das or servant is when you renounce all of your I or of your egoism and then you dedicate your life to the service of the guru.
0: Jab aapka man shuddh ho jata hai और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा मित्र, फ्रेंड.
1: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant. He stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
1: Atmanivedan is when you say, I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: Oh, Atmanivedan. Atmani, hamara ye nivedan hai ki hum aapki yahan admission chahte hain, entry chahte hain, aur ab hum usi condition mein rehna chahte hain jis condition mein hamare Gobind rehte hain, God rehte hain.
1: So it's a request of the soul that I want to live in that condition, I want to live in such a way like a God is living.
0: Iske baad mein final MA ki pariksha hoti hai ek hi aadmi ke liye. Wo kya hai? Gyan ki bhumika.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge, is the last one. Or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books
0: उसमें है. पहली बुक्स क्या है? सुभिच्छा. क्या है भैया? सुभिच्छा. सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरु जी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा. रह लेना, हम कहाँ मना.
1: First book is Svaicha, or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: Acha, ab
2: dusra. And then he said, most welcome, I'm not stopping you.
3: I have no problem, come.
0: Aapko to hum ek media bana rahe hain. Acha, ab bolo, Guruji.
1: Guruji.
0: Mere vichar. आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise guru ka gyan shishya mein aane lagta hai, isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
1: So the next one is Tan Mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya of disciple.
0: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, Panchamasan Satmaka Padartha Bhavani Sasti Saptami Triyagashmirtam. To Chauthi jo bhumika hai, chauthi pustak hai, uske karan guru mein aur shishya mein jo hai, ek ta, ek akar, ek abhivyakti aur ek vichardhara ban jati, usko sattvapatti bolte.
1: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
0: Padartha bhavani kehte hain, padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
1: So the next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
0: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
1: Padartha abhav, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold for you, this is equal.
0: No, pehle asansakti. Asansakti ye hai, asansakti isko kehte hain ki kabhi koi relation mein aapke mother hain, father hain, brother hain, wife hain, children hain, koi bhi hai, in mein aap guru ko chhodkar in mein aapke man ka nahi jana, usko bolte hain asansakti.
1: Asansakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
0: Ab to hamara ek hi nara, na hum kisi ke, na koi hamara.
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padartha bhavani, jahan sona, mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asansakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things, from this world, like gold and all these things.
0: Hamare Bhagavat mein Sringi ne saap diya tha, Parikshit ko takshak kaatega, aur last mein takshak aaya phana utha karke, lekin Parikshit dara nahi. Aap daroge jab koi aayega, ear, wo kya na bolte usko,
1: saap, saap,
0: snake, wo aayega. So aap baithe rahoge ki bhag jaoge?
1: So like in Bhagavata there is this curse of king.
0: Isko padartha bhavani bolte hain ki kisi se bhi humko khatra mehsoos nahi hoye, darne lage. Aur Krishna Bhagwan ne kaha, nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka, nachenam kledyanti apo na shosheti mar. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव, देयर इज नो फियर ऑफ स्नेक्स, देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, देयर इज नो फियर दैट फायर विल बर्न यू, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho aur aapki uske prati koi aap mein koi attraction ya koi vritti ya koi work aap usme nahi karte ho तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: And then afterwards is turiya avastha, the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract
0: at all. इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया।
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय। इंद्रदान सम्राट महाराज नंदजी भगवान की जय। राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय।

0: ने की जय शिशिधवेश्वर महादेव की जय इंदुराम सामरथ सतगुरु स्वामी माधवरंची भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरंची योगी राज की जय सत्य सनातन धर्म की जय
1: सुभान भजन मोर